सन म्हणतो बिहार गए तो संत थाना मग हरमा ते तमान एम्बर बेडा तिथे मंगायचे तिथे मपांची दमाय मेली मसायकान मसाला दंग दमाय karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.